0: हिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अर्थात् ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: ऐसी धारणा है कि मृत्यु के बाद मनुष्य स्वर्ग या नरक में जाता है अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए। लेकिन सत्य यह है कि स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही है। प्रत्येक मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल उसे भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी उसे इस जीवन में इस धरती पर ही भोगना पड़ता है।

सब बकवास है, सब बकवास, सब बकवास है, सब बकवास। बालू मेहता को जिसकी चलती है हुकूमत उसकी है दुनिया का दस्तूर यही, सब गलत यहाँ ताकत ही सही, सब बकवास। किसने की प्रेम की बात उसे हमारे सामने लाया जाए, हम उसे सख्त सख्त सजा देंगे।

0: एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजनार्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जे जे ज्वेलर्स, बसंतपुर न्यू रोड, दमकल नजिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

भी शरद ऋतु में थी, इतनी बार आई और आकर चली गई। गर्मी भी आई, सर्दी भी आई, बरसात भी आई, लेकिन मानो मेरे जीवन में ये जेठ और आषाढ़ की तपती लू, ये विरह की तख्त अवस्था बनी ही रही। क्या तुम इसका निवेदन नहीं करोगे?

काव काव करता है तो किसी मेहमान के आने का संदेश देता हो जैसे। सखी शुरू शुरू में तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आज मेरे प्रीतम आने वाले हैं, लेकिन ये रोज रोज की काव काव अब मुझे झुलसाने लगी। क्यों? जैसे उम्मीदों का

दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ। मैं तेरी

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित पसिना सोच्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट लेडिज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।
4: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
5: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
4: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स
6: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरुको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
7: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
8: संपर्क नंबर 5320411 9802076888।
6: जेजे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।
9: One oh four eight.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: Four, eight.

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: સાવેલ સુચેપાટી
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: addio ad lui e baci.
1: अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के आपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी

0: 104.8.
1: अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के आपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी

0: अरे कॉफी आ गिल बा का मियाज?
1: चुप रहा आए
2: भाग मर, झूठों के माथा मोले बड़ा दिमाग
1: भाग मर दे आए। चुप
0: तकाल लौंडा पचीसी कोयले बड़ा गाव ना।
1: आए राम जी,
0: ये राम सीता जी खाली होई।
1: अरे नून रोटी कैसे जुटाई, आ करजे में उड़ी जाता कमाई,
2: लोटा पाऊं जियो।
1: महंगाई सौ तीन भइल बिया डाई,
2: लोटा पाऊं।

0: प्यालेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: शान्ति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के आपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी

0: 1048.
1: अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के आपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी

राधा कृष्ण ज्वेलर्स विशाल बजार पसल नंबर 13 न्यू रोड काठमांडू राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई सदैव FM AJ 104.8 MHz

0: Weekend Classic Radio Show.
1: वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और आज का ये एपिसोड यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़ा है। यश चोपड़ा साहब तो इंजीनियर बनने वाले थे, पासपोर्ट भी बनवा लिया था, लंदन जाने वाले थे, उसके बाद कैसे ये फिल्मों में आए और क्यों इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ी, ये भी बड़ी अनोखी कहानी है जो आज आपके साथ बांटी जाएगी। और साथ ही यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ बड़े ही अनोखे किस्से भी आपके साथ बांटूंगा जरूर। लेकिन उससे पहले चांदनी फिल्म का ये गाना मैं चाहता हूँ कि हम सुने सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।

0: गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से और इन्हीं की फिल्मों के कुछ बड़े ही जबरदस्त गाने आप सुन रहे हैं। तो जरा ये जानें कि यश चोपड़ा साहब तो इंजीनियर बनने वाले थे और इसके बावजूद ये कैसे बने फिल्मों के जबरदस्त डायरेक्टर। देखिए हुआ यूं कि इनके परिवार ने सोचा कि भाई यश जो है घर में सबसे छोटा है, क्यों ना
1: जबरदस्त डायरेक्टर।
0: देखिए हुआ यूं कि इनके परिवार ने सोचा कि भाई यश इनके पासपोर्ट बनाने की तैयारियां शुरू हुई और ये बंबई आ गए जलंधर में से जलंधर से आए हुए इनके बड़े भाई बीआर चोपड़ा इनके पहले ही अपना नाम कमा चुके की तैयारियां शुरू हुई और ये बंबई आ गए जलंधर में से जलंधर से।
1: तो यश जी ने देखा
0: इनके बड़े भाई बीआर चोपड़ा पहले ही अपना नाम कमा चुके थे, बड़े भाई से अच्छी अच्छा काम कर रहे थे।
1: तो यश जी ने देखा कि भाई ये काम
0: मुझे अपना असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते,
1: तो क्यों ना बड़े भाई से।
0: तो यश जी ने कहा भाई ये तो चोपड़ा साहब से इन्होंने बात किया,
1: तुम चाहो तो
0: भाई
1: मैं महबूब खान से बात करता हूं,
0: मुझे अपना असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते
1: तुम उनके असिस्टेंट बन
0: गए। ये तो मुमकिन नहीं है, इनकी किस्मत पे आईएस जौहर साहब का नाम लिखा हुआ था हूं
1: राजपूत, पर आईएस जौहर साहब के काम करने का तरीका ना
0: यश जी को पसंद नहीं
1: है, पर इनकी किस्मत में आईएस जौहर साहब का नाम लिखा हुआ
0: था, अपना ही
1: असिस्टेंट आईएस जौहर साहब के काम करने का तरीका जरा यश जी को पसंद नहीं है।
0: इंजीनियर तो नहीं,
1: उन्होंने अपने बड़े भाई साहब बीआर चोपड़ा साहब
0: भी आप अपना ही असिस्टेंट बना लें
1: और मुझे अपने साथ काम सीखने दें
0: और मन लगा काम
1: तो नहीं बन पाऊं।
0: ईश्वर ने चाहा
1: बीआर चोपड़ा साहब डायरेक्टर भी बनोगे
0: तो मेरे,
1: और यश जी ने उसी दिन
0: तो बन जाओ
1: ये बात
0: और मन लगा काम करो,
1: ये मन लगा
0: ईश्वर ने चाहा
1: और डायरेक्टर भी बनोगे
0: और यश जी ने उसी दिन
1: ये बने
0: ये
1: फिल्म
0: में डायरेक्टर।
1: लेकिन
0: यश जी की जिंदगी में अजीब और गरीब उतार चढ़ाव थे,
1: कुछ हीरोइन
0: इनके साथ शायरी बांटा करती थी,
1: लेकिन
0: कैसे
1: यश जी
0: शायर की वजह से
1: अजीब और गरीब उतार चढ़ाव थे,
0: ये बड़ी हीरोइन इनके साथ शायरी बांटा करती थी
1: और कैसे
0: एक शायर की वजह से ही
1: इन्होंने फिल्म भी बनाई,
0: ये बड़ी अनोखी कहानी में आ जाओ
1: सुनाऊंगा।
0: उससे पहले
1: बड़ा ही

वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से आप सुन रहे हैं और साथ ही यश जी की फिल्मों के बड़े ही जबरदस्त गाने। देखिए साहब, एक मकाम यश जी की जिंदगी में ऐसा आया कि इन्हें आनंद बख्शी साहब को इनकार करना पड़ा। बात दरअसल यूं रही कि बी आर चोपड़ा साहब रहे कि यश जी, इन दोनों ने ही सोच लिया था कि भाई साहिर लुधियानवी से बड़ा कोई गीतकार है नहीं, इनके ही लिखे गीत जो हैं इनकी फिल्मों में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आनंद बख्शी साहब ने कहा कि भाई यश जी, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी फिल्मों में गाने लिखूँ, पर यश चोपड़ा साहब ने मना कर दिया। कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि मैं तो साहिर से ही गाने लिखवाता हूँ और कभी भविष्य में ऐसा मौका आया तो मैं आपके साथ भी काम करूँगा, लेकिन जब तक साहिर साहब हैं उन्हीं के साथ काम करूँगा। और साहिर साहब के लिखी एक नज्म से इतने मुतासिर हुए कि इन्होंने सोच लिया कि अब फिल्म बनाई जाएगी तो इस नज्म पर ही आधारित बनाई जाएगी। नज्म थी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और बस साहब साहिर साहब की ही इस नज्म पे इन्होंने फिल्म बनाई। कभी कभी संगीत दिया खयाम साहब ने और आवाज़ दी मुकेश जी ने। देखिए साहब, उस ज़माने में सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ये उसूलों के बड़े पक्के थे, ठान लिया कि साहिर के साथ काम करेंगे तो साहिर के साथ ही काम किया। अब साहिर की जादूगरी सुनते हैं इस फिल्म से, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक लम्हा ऐसा भी आया कि एक बहुत ही बड़ा स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, जो गाने नहीं लिखना चाहता था, यश चोपड़ा साहब ने जरा जबरदस्ती की और कहा कि भाई गाने तो लिखने पड़ेंगे, और बना दिया इन्हें एक महान गीतकार। कौन है वो गीतकार और कौन सा है वो गाना, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: वीकेंड क्लासिक जैसा कि नाम है, हर हफ्ते ये शो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमसे जुड़ते रहें, हम आपसे जुड़ते रहें और पुराने गाने सुनते रहें।
1: अब चाहे मार उठे या यारा, मैंने तो हाँ कर ली।
2: अब चाहे मार उठे या बाबा यारा, मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे सर

चाहे रब रूठे या दुनिया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझे नियत कर ली।

वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और देखिए साहब, यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ बड़ी अनोखी कहानियां मैं आपके साथ बांट रहा हूं। कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था कि एक बड़ा ही जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, जो गाने नहीं लिखना चाहता था, यश जी के कहने पर वो गाने भी लिखने लगा। मैं देखिए हुआ यूं, ये स्क्रिप्ट राइटर जो रहे, ये जोड़ीदार थे, मतलब सलीम जावेद। सलीम खान साहब ने तो गाने नहीं लिखे, पर जावेद अख्तर साहब ने गाने लिखे। इन दोनों ने मिलकर एंग्री यंग मैन की इमेज बनाई थी, लेकिन जब ये टूटे तो एंग्री यंग मैन को ज़रा रोमांटिक मैन भी बना दिया। हाँ, जावेद अख्तर साहब दरअसल सोचते थे कि भाई गाने नहीं लिखूंगा, ये शायरी जो है वो मेरे निजी जीवन से जुड़ी हुई है, मैं इसे कैसे फिल्मों में ला सकता हूँ। पर यश जी ने कहा कि भाई जावेद साहब, आपको गाना तो लिखना पड़ेगा। गाना लिखा फिल्म सिलसिला के लिए। ये जावेद अख्तर साहब का लिखा पहला गाना था जो फिल्मों में आया। ये बड़ा ही अनोखा गाना है, इसमें ख्वाब भी हैं और गुल भी हैं। आज समझ गए फिल्म सिलसिला के इस गाने के मुतालिक। जी हाँ, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ज़रा से सुनते हैं और उसके बाद बताऊंगा कि यश चोपड़ा साहब सुनील दत्त बन गए थे और महेंद्र कपूर किशोर कुमार। भाई ऐसे क्या हालात थे कि यश जी को सुनील दत्त बनना पड़ा और महेंद्र कपूर साहब को किशोर कुमार। ये भी बड़ी दिलचस्प दास्तां है, बहुत जल्द सुनाऊंगा सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

हमारी प्यारी प्राण वल्लभा बरसाने में जय राधे राधे जय राधे राधे श्याम मिला दे श्याम मिला दे।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

थैला में रखी थी 30-40 रोटी। बाबा नहाने गए तब तक मैंने वो रोटियां इधर उधर कर दी और झाड़ू वाड़ू लगा दिया, संत हैं आएंगे बात करूंगा बैठ के। वो आकर कुटिया में बैठी और हमसे बोले, लाला मेरी रोटी कहां गई? मैंने कि बाबा वो तो हाथ से भी ना टूट रही, मैंने तो फेंक दी। अरे जी तुमने कहा कियो? मैंने कि क्यों? बोली ये तो मेरी मधुकरी थी। मैंने कहा बाबा जब मधुकरी आपको मांगनी है तो रोज ताजी मांग लिया करो। तो संत बोले मैं महीने में एक दिन जाता हूं भिक्षा लेने ब्रजवासियों के घर से, एक दिन भिक्षा लेता हूं। मैंने कहा रोज भिक्षा लेने में क्या आपत्ति है? तो संत बोले रोज भिक्षा में ही पूरा टाइम निकल जाएगा तो भजन कब करेंगे? मैं तो बेटा महीने में एक दिन भिक्षा लेने जाता हूं ब्रजवासियों के घर से एक एक रोटी, और 60 रोटी हो जाती है तो थैले में टांग देता हूं, रोटी सूख जाती हैं रात्रि को सोने से पहले 2 रोटी निकालता हूं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस कटोरी में रख देता हूं, पानी भर देता हूं, सवेरे तक रोटी गल जाती है पानी निकाल देता हूं उसमें नमक डाल के खा लेता हूं। क्योंकि हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। जीना तो इसलिए है कि गोविंद ने ब्रजवास दिया है तो जितने दिन रहेंगे भजन बनेगा। कितनी विचित्र बात है। एक बार कनेक्शन जिसका उधर जुड़ जाता है ना, फिर वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है, जिनको कोई जानता ही नहीं, कोई वो तो चाहते भी नहीं कि हमें कोई पहचाने। भूख लगे तो मांगे खाए हो, गिनो न सांझ सवेरो, ऐसो कब करे हो मन मेरो। तो ब्रज में जिन्होंने जन्म लिया कम से कम वो यह अनुभव तो नहीं कर सकते कि देश बिराना है भोले पथिक। महात्मा जड़भरत ने भवाटवी का वर्णन किया, ये संसार एक अटवी है, हम लोग व्यापारी हैं, हमारे पास बड़े बड़े रत्न हैं, मन है बुद्धि है, और इन रत्नों को चुराने के लिए बड़े बड़े चोर इस अटवी में बैठे हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अहमता ममता, और इन सबसे अपने मनरूपी रत्न को बचा के रखना है क्योंकि उससे आत्मचिंतन होगा, आत्मानुभूति होगी, भटकाव खत्म होगा, प्रभु को पा सकोगे। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयाशक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जड़भर जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश किया, कमंडल उठाया बाबा चलते बने। ये कहार लोग बोले महाराज पालकी तैयार है आप विराजिए। रघुगण बोले जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो, फिर किसी कंधे पर बैठकर मैं क्यों चलूं? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन रघुगण को आत्मबोध हो गया। ऐसे मनीषी महापुरुषों के प्राकट्य की वजह से हमारी इस भूमि का नाम भारत भूमि है, इसको भारत बोलते हैं। भारत में 3 भरत हुए, ध्यान देना, एक दशरथ नंदन के कुमार श्रीमान भरत, दूसरे श्रीमद भागवत जी के जड़ भरत, और तीसरे शकुंतला नंदन दुष्यंत कुमार श्रीमान चंद्रवंशीय भरत। इनमें पहले भरत हैं भक्ति योगी, दूसरे ये हैं ज्ञान योगी, और तीसरे होंगे कर्म योगी। इन 3 भरतों की आदर्शता से इस राष्ट्र का नाम भारत हो गया, जिसको बाद में ना समझो ने इंडिया कर दिया, इंडिया। अब इंडिया का अर्थ क्या होता वो इस पवित्र मंच पे तो मैं बता नहीं सकता। इंडिया का व्याकरण से अर्थ क्या होगा ये तो मैं आपको कैसे बताऊं, पर आप इतना जरूर समझ लें कि इंडिया जो है ना वो स्त्रीलिंग भी नहीं है पुल्लिंग भी नहीं है, ये नपुंसकलिंग है। ऐ कितना सुंदर नाम था इस राष्ट्र का, भारत या हिंदुस्तान, इतना सुंदर किसी राष्ट्र का नाम दुनिया में नहीं है, इंडिया। अब विदेशी आक्रमणकारियों ने जब इस राष्ट्र पर आक्रमण किया तो सबसे पहला काम किया नाम बदलने का, कर्णावती का नाम रख दिया अहमदाबाद,
भाग्यनगर का नाम कर दिया हैदराबाद, हमारी पड़ोस में हरिगढ़ का नाम कर दिया अलीगढ़, इंद्रप्रस्थ का नाम कर दिया दिल्ली, और भारत का नाम कर दिया इंडिया। और अभी देखना क्या क्या होने वाला है, बोलो जय श्री कृष्ण। कितना सुंदर नाम है भारत। भरत जैसे मनीषी ज्ञानी महापुरुष इस राष्ट्र में पधारे, इसलिए तो भारत है। वैसे हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं परीक्षित, सप्तद्वीपवती पृथ्वी, और 7 द्वीपों में एक जम्बुद्वीप है, और जम्बुद्वीप में फिर 9 वर्ष हैं, उन 9 वर्षों में एक भारत वर्ष है, सुखदेव जी बता रहे हैं। और राजन तत्रापि भारतम एव वर्षम कर्म क्षेत्रम, इन 9 वर्षों में भारत वर्ष ही

यहां जो भी कर्म करते हैं उनको फल तो भोगना पड़ता है। बुरा करेंगे तो बुरा, अच्छा करेंगे तो अच्छा। बुरे का फल नरक है, अच्छे का फल स्वर्ग है, और भक्ति का फल गोविंद। तो परीक्षित ने कहा, भगवान ये नरक क्या होते हैं, थोड़ा 5 मिनट में जल्दी बता दूं मैं, कि वृंदावन में नरकों की ज्यादा वर्णन करना जरूरी नहीं है, पर कथा में नियम है इसलिए मैं संक्षिप्त कर देता हूं। परीक्षित ने पूछा, नरक कहां भगवान, किम देश विशेषा, ये नरक किसी देश का, प्रांत का, गांव का नाम है, क्या है नरक? सुखदेव स्वामी बोले, हमारी भूमि से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक है। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है, 4 कोस का एक योजन होता है, तो 99,000 योजन कितना किलोमीटर हुआ आप गुणा कर लें। इतनी दूर यहां से दक्षिण में ऊपर नरक है। इसलिए कोई भी समझदार हिंदू अपने घर का दरवाजा दक्षिण की ओर नहीं रखता। हां, दक्षिण में द्वार वास्तु के हिसाब से भी उतना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि दक्षिण में ही तो 28 नरक हैं। वो रंगनाथ भगवान ने लंका की ओर मुंह कर लिया विभीषण के कहने से, वो एक अलग बात है। अब यहां पर भी व्यक्ति जब पाप कर्म करता है, ये मत सोचना कि कोई यहां तो पुलिस को दिया, डॉक्टर को दिया, वकील को दिया, सब खत्म, उधर कुछ नहीं चलता। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो किया है वो भोगना पड़ेगा, पक्की बात है। पर दोनों ही बातें भगवान कहते हैं, अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और वही भगवान गीता में कहते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। ज्ञान में जब तक प्रवेश नहीं है, भक्ति में जब तक पूरा प्रवेश नहीं है, तब तक तो आवागमन कर्मों का भोगना लगा ही रहेगा। ज्ञान रूपी अग्नि जिस दिन हृदय में प्रकट हो जाए, भक्ति के माध्यम से गोविंद के चरणों में समर्पित जिस दिन हो जाए, उस दिन आगे पीछे का सब हिसाब खत्म। बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक वहां नहीं है तभी तक सब चल रहा है। अवश्यम एव भोक्तव्यम तामिश्र अंधतामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाक कालसूत्र असिपत्न बन, ये सब नरकों के नाम है, 28 नरक हैं। जो व्यक्ति यहां पैसे लेके झूठी गवाही देते हैं वो तामिश्र नाम के नरक में जाते हैं, ऐसा लिखा है। जो पराई स्त्री पराई धन को हरने की चेष्टा करते हैं वो तो अंधतामिश्र में जाते हैं। हाँ, और जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करते हैं वो रौरव नरक में जाते हैं। एक रुरु नाम का कीड़ा होता है, इधर से घुसता है इधर से निकल जाता है, चलनी का जैसा शरीर बना देता है, मरने से ज्यादा तकलीफ होती है पर मरता नहीं है, क्योंकि वो यातना शरीर मिलता है, स्पेशल शरीर। हाँ, और आगे सुखदेव जी बता रहे हैं, यस्ते वा उग्र पसुन पक्षिणो वा प्राणतः उपरंधयति तमपकरणम पुरुषादैरपि विगरितम अंधकूपे तत्तैले कुंभी पाके उपरंधयन्ति। कहते हैं राजन, जो व्यक्ति अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाने के लिए जीव जंतुओं को मार करके रान करके खा जाता है, उसको यमराज के दूत पकड़ करके ले जाते हैं और कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं। गुरु जी, कुंभी पाक क्या होता जी? सुखदेव जी बोले, तमपकरणम पुरुषा दैरपि विगरितम अंधकूपे तैले कुंभी। हां, करके रांध करके खाए उस पापी को पकड़कर यमराज के दूत तप्त तैल में डाल देते हैं, उसी का नाम है कुंभी पाक। पकौड़ी जैसा फूल जाता है, हाय हाय करके चिल्लाते हैं, बोले पहले क्यों नहीं सोचा था। इसलिए आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, किसी के प्रति ऐसा व्यवहार मत करो जो हमें अपने लिए बुरा लगता है। राजन, ये 5 प्रकार के पाप कर्म तो अनजान में हम लोगों से हो जाते रोज। कौन कौन से? अब देखो, अपन रास्ते में चलते हैं तो चींटी मर गई, मारना नहीं चाहते, मर गई। हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो उसमें भी छोटे कीड़े तो मर ही जाते हैं। घर में भोजन बनाते हैं तो चूल्हे में लकड़ियों में कितने जीव मर जाते होंगे क्या मालूम। हल जोतते हैं, खेती किसान करते हैं, उसमें भी तो जंतु मर ही जाते हैं।
ऐसे जो अनजान में अपन से पाप कर्म बनते हैं ना राजन, इसके लिए हमें हर गृहस्थ व्यक्ति को 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। ध्यान से सुने, और हमारी माताएं यज्ञ कर सकते हैं। ये जो मारवाड़ी समाज के लोग होते हैं ना, ज्यादातर कथाएं भागवत के आयोजन हमारे उनमें ज्यादा होते, तो मैंने देखा है कि वो देश में विदेश में जहां भी रहते हैं, उस घर की महिलाएं इन 5 यज्ञों का निर्वहन कर ही लेती हैं। भोजन बनाओ तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालो, पहला यज्ञ हो गया। इसको बोलते हैं गौ ग्रास। भोजन बनने के बाद में रोटी के कुछ टुकड़े घी चीनी मिला के 5 बार अग्नि में डालो, ये दूसरा यज्ञ हो गया। अग्नि को जमा दिया, ज्यादा दूर नहीं जा सकते तो आटा 50 ग्राम ले लो, वृक्ष की जड़ों में चैंटी रहती हैं उनको डाल दो, भंडारा हो गया चैंटियों का। 150 ग्राम अन्न के दाने अपनी छत पर चढ़ जाओ, पक्षियों के लिए डाल दो। अच्छा, पक्षियों को दाने डालने की प्रवृत्ति अभी मैं देख रहा हूं लोगों में ज्यादा बढ़ रही है। भारत में अच्छे बड़े बड़े शहरों में लोग मरने वाक के लिए जाते हैं तो वहां पर भी मैं देखता हूं पक्षियों को डालते हैं। अच्छी बात है, डालना चाहिए। आटे की गोलियां बनाकर के मछलियों को डालो, अतिथि आ जाए उसका सत्कार कर दो, कोई संत पधारे उसको शुद्ध भिक्षा प्रदान कर दो। भिक्षाओं में कभी अपवित्र अन्न नहीं होना चाहिए। तो अनजान में जो हमसे पाप कर्म बन जाते हैं राजन, इनसे छुटकारा संग की संग होता रहता है। ऐसे 5 यज्ञ करने से घर में स्त्री वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, सुमति बढ़ती है और गोविंद की कृपा भी बरसती है। राजन का मान लीजिए हमसे कोई पाप कर्म बड़ा ही हो गया, लो हमको नहीं मालूम था साहब बड़ा हो गया, पर हम नहीं चाहते कि उसके बदले हमें जाना पड़े नरक में, तो हमें क्या करना चाहिए?

किसी भी कर्म का फल यदि हमको भोगना नहीं है, बुरा कर्म का फल, तो उसका अपन को प्रायश्चित करना चाहिए। ध्यान से सुनना, प्रायश्चित क्या है? सुखदेव जी कहते हैं प्रायश्चित का मतलब होता है पश्चाताप। मैंने कहा क्यों जी, आपने झूठ क्यों बोला? आप बोले ठाकुर जी गलती हो गई। मैंने कहा अच्छी बात नहीं है ये तो भाई, बहुत गलत बात है। आपने अगर कुछ बता दो महाराज क्या करें? मैंने कहा तो उस झूठ के बदले घर में सत्यनारायण की कथा करा ली। तो उस झूठ का एक प्रकार से प्रायश्चित हुआ, लेकिन वो प्रायश्चित असली प्रायश्चित कब होगा? जब आगे नहीं बोलने का संकल्प ले लो कि आगे झूठ नहीं बोलेंगे। समझ में आया ना? आज झूठ बोला, कल प्रायश्चित किया, परसों फिर बोल दिया, अरे फिर तो ब्याज बढ़ती जाती है। अच्छा, प्रायश्चित भी हमारे संतों ने, मनीषियों ने, शास्त्रों में कई प्रकार का बताया कि तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च तमेन च प्रायश्चित्यानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। कोई तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई यम नियम आसन प्राणायाम के माध्यम से प्रायश्चित करता है। लेकिन मुझे लगता है कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा।

चरणों की जो भक्ति है ना परीक्षित, वो सर्वोत्तम प्रायश्चित्य है किसी भी कर्म का। बस कैसे भी मन को गोपाल के चरणों में लगा दो, सबका प्रायश्चित्य हो गया, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं राजन, सकृन मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद्गुणरागयैरिह नते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चिरं निष्कृता। ऐसा भगवान सुखदेव बता रहे हैं। सकृन मन, एक बार भी जिसका मन गोपाल के चरणों में लग जाए, भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार भी जिसने प्रभु के नाम का उच्चारण कर दिया उच्च स्वर में, वो यमराज की पुरी में कभी स्वप्न में भी जाता नहीं, ऐसा शास्त्रों का अभिमत है। और मुझे एक बात याद आ गई राजन, कान्य कुब्जे द्विज कश्चित

कन्यकुब्ज गोत्र में एक पंडित जी प्रकट हुए, ध्यान से सुनना। उनका नाम था अजामिल। बहुत अच्छी कथा है भागवत में, नाम महिमा। अजामिल जी की एक पत्नी है, एक नन्हा सा कुमार है, बालक है। मैंने शायद किसी प्रसंग में कथा में कहा हो कि हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं, आंखें और कान। कानों से गंदा गीत सुनेंगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा, आंखों से नग्न नृत्य देखेंगे तो भी मन में काम प्रविष्ट होगा। इन दोनों पर जिसने काबू पा लिया वो भक्ति के मार्ग पर अबाध गति से चल सकता है। अजामिल सुंदर भी है, सुशील भी है, पढ़ा लिखा भी है, निश्चित रूप से विद्वान है, कर्मकांड में बड़ी प्रवृत्ति भी है, पर आंखें थोड़ी कमजोर हैं। आंखें कभी कभी बहक जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो ना, धीरे काय को बोलते हो। वैष्णवों की एकादशी भी है आज, कई लोग, हम लोग तो प्राय दूसरे दिन आती है ना वैष्णवों की, उस दिन दिक्कत हो सकती है जय श्री कृष्ण बोलने में, पर फलाहार तो ठीक ही होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अजामिल की पत्नी सुंदर है, बच्चा भी अच्छा है, और एक बार ये कहीं गया था, किसी नर्तकी को देख लिया। हाँ, कोई बेश्याई थी, हाँ, उसके गोरी चमड़ी को देखा, सो पंडित जी फिसल गए और उसके पास जाकर के बोले कि तुम हमारे घर चलो। अब वो तो आ गई, पैसा चाहिए, और घर पे जैसी आई उसने आते ही प्रश्न किया, ये कौन है? बोले हमारी धर्म पत्नी जी हैं। बोले पत्नी पत्नी रहेगी तो मैं नहीं रहती, या तो मेरे को रखो या पत्नी को रखो। ऐसा आकृष्ट हो गया ये नासमझ, उसकी गोरी चमड़ी पर अपनी पत्नी को त्याग दिया। एक बात कहूं, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, थोड़ा अंदर की बात बता रहा हूं, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो या तो कोई गलती करते नहीं है, और करते हैं तो फिर अव्वल दर्जे की करते हैं, छोटी मोटी नहीं करते। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। पत्नी को निकाल दिया, पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है, और सुबेरे संध्या वंदन करने बैठा, ब्राह्मण था, गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है, तो वेश्या गणकांड डांट करके बोली, क्या माला वाला लेकर आंख बंद करके बैठ जाते हो, ज्यादा पैसे कमा के लाओ ना। अब तो देखो अजामिल बदल गया, इसकी प्रवृत्ति बदल गई, और धीरे धीरे धीरे धीरे क्या हुआ कि अब देखो ऐसी स्थिति बनी कि वो तो चोरी करने लगा। दास्या संसर्ग दूषित, भगवान सुखदेव कहते हैं दासी के संबंध से मन दूषित हो गया, इसके विचार प्रदूषित हो गए, चोरी करने लगा, फिर बड़ी चोरी करने लगा, फिर और बड़ी चोरी, फिर छोटा मोटा डाका, फिर बड़ा डाका, फिर तो डाकू पूरा गैंग, और हाथ में लंबी तलवार लेकर के, नग्न तलवार और काली पट्टी बांधकर जब अजामिल जी निकले, पूरी बजरिया एक मिनट में बंद। लोग सवेरे उठते तो कहते, हे प्रभु अजामिल आज दिखाई न दे जाए। एक और बात कहें, अब इसको सुधारे कौन? छोटे बच्चे भी डरते हैं, युवान भी डरते हैं। नन्हा बच्चा माता की गोद में दूध पी रहा है, नखरे दिखाता नहीं पीना, तो मां कह देती पी ले नहीं अजामिल आ जाएगा, एक श्वास में कटोरा दूध खत्म। बच्चे भी डरते हैं, इसको कौन सुधारे? भागवत में लिखा है दोगधुर्वई परतो भयम, जो दूसरों को डराते हैं ना उनको डरना भी पड़ता है, और जो कभी डराते नहीं है ना वो कभी डरते भी नहीं। ये बड़े बड़े तस्कर और बड़े बड़े अराजक कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको रात में चैन से नींद नहीं आती,
24 घंटे की चिंता रहती है पुलिस की कौन सी गोली छाती चीर कर निकल जाए क्या मालूम, क्योंकि वो दुनिया को डराते हैं तो उनको डरना पड़ता है। पर जो संत कवि किसी को डराता नहीं वो तो वृक्ष के नीचे जंगल में भी सो जाता है, कोई डर नहीं। अब ये संत सुधारे, बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, वैष्णव जगत के दो बड़े पवित्र धाम हैं, श्री वृंदावन धाम, श्री अयोध्या धाम। अच्छा, अयोध्या के और वृंदावन के संतों में बड़ा मनोविनोद होता रहता है, बहुत आनंद आता है। एक बार अयोध्या के सब संत बोले, ठाकुर जी अयोध्या में भी तो करो कथा, वहां कार सेवक पुरम ग्राउंड है, मैंने हमारे दिल्ली के कोई भक्त हैं उन्होंने सब व्यवस्थाएं करी, मैंने कहा संतों को सुनाऊंगा कथा बस। हाँ। महाराज ऐसे ऐसे संत आते विरागी महात्मा, हजारा माला लेके, हजारा माला लटक रही है और करीब 5000 संतों के बैठने की व्यवस्था मैंने आगे की कक्ष में की कि केवल संत जन यहां विराजेंगे, बाकी सब लोगों की व्यवस्था की थी आयोजकों ने। मैं आपको बता नहीं सकता कैसा निर्मल हृदय होता संतों का, इतने भाव से कथा सुनते। मैं नित्य संतों का दर्शन करने निकलता, शाम को 10 मिनट जितना समय मिलता उनसे भगवत चर्चा करता। तो बड़ी निर्मल भावना, और कभी कभी चुटकी भी लेते रहते हैं, माखन चोर के गांव से आया है। हाँ, तो मैंने कह दिया कि वो कन्हैया को जब यशोदा ने बांधा था उखल में, तो कृष्ण जो हैं उसके पहले उलू खलांग्रे रूपरि व्यवस्थितम मरका एक कामम ददता सुचिस्मितम, कन्हैया उखल पे चढ़ गए और बंदरन को माखन लुटावे लगे। तो मैंने थोड़ी चुटकी ले ली, मैंने कहा इसलिए लुटा रहे थे बंदरों को माखन, कन्हैया सोचे राम अवतार में बानरों ने मेरी बड़ी सेवा की थी। अब उस समय तो सतुआ के अलावा मैं कुछ दे नहीं सकता था, इसलिए कृष्ण अवतार में उनको माखन खिला के ऋण से उऋण हो रहे। तो एक महात्मा जी बोले सतुआ खावे तुम्हारा कन्हैया, उसके पिताजी, उसके बाबा, उसके परबाबा, हमारे राम जी काय को खाए सतुआ। अरे मेरे के महाराज,

चली श्रीधाम वृंदावन आ रही है, रास्ते में पड़ता है अजामिल का गांव। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ता है, कन्नकुब्ज गोत्र का था ना कन्नौज का। महात्माओं के पहले हमारे प्राचीन भारत में संतों की मंडली चलती थी ना, जमात चलती थी पूरी। हाँ, साथ में भगवान की डोली चल रही है, मृदंग बज रहे हैं, संत कीर्तन करते चल रहे हैं। जिस गांव में पहुंचे रात हो गई, वहीं पर रुक गए, वहीं भंडारा हो रहा है, वहीं सत्संग हो रहा है, सवेरे फिर यात्रा शुरू। कभी किसी तीर्थ में जा रहे हैं, कभी किसी तीर्थ में, गांव के लोग आगे बढ़ बढ़ कर सेवा करते। अभी अयोध्या के जो संत जन हैं वो बड़े भाव बड़ी श्रद्धा से वृंदावन की ओर आ रहे और गोविंद के नाम का कीर्तन करते आ रहे। मृदंग बज रही है, मंजीरा बज रहा है महाराज। अब हुआ ऐसा कि अजामिल का गांव रास्ते में पड़ गया। एक शिष्य बोले, गुरुजी अब रात्रि होने को आई, यहीं पर किसी भक्त के हैं आज डेरा डाल। संतों की भाषा भी बड़ी विचित्र होती है। हाँ, मूर्ति बोला करते, मूर्ति 25 मूर्ति हैं। रोड के किनारे कोई खड़ा था नालायक आदमी, जो लायक नहीं वो नालायक। बोले संतों ने पूछा, बच्चा हम 25 मूर्ति हैं, हाँ श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं, अब रात्रि होने को आई तो इस गांव में किसी भक्त का घर हो तो बताओ, आज उधर ही विश्राम करेंगे, उधर ही भंडारा होगा। तो आदमी ने देखा और सोचा, बड़े आगे तिलक फूटा लगा के, बाबा जी ऐसे भगत के घर भेजूंगा, जीवन भर याद रखेंगे। अब क्या समझे महात्मा, बाबा हमारे गांव में तो सबसे ऊंचा भगत अजामिल है, आप अजामिल के घर चले जाइए, सुनिए भोजन भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगी, और प्रभु ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। और संतों को क्या मालूम ये कौन सी पूजा की बात करते हैं, बेचारे मृदंग बजाते, चिमटा बजाते, सेताराम का झंडा लेके रामदास आगे चल रहे। अजामिल के घर के द्वार पर झंडा गाड़ दिया, ये तो बढ़िया हुआ अजामिल घर में नहीं था, बड़ा करुणा दृश्य उपस्थित हो जाता। अजामिल की पत्नी भीतर से निकली, महात्माओं को देखा, जटाधारी, मठाधारी, सोटाधारी, लोटाधारी, दूधाधारी, बहुतीधारी, तुम्माधारी, त्रशूलधारी, बड़े अद्भुत विचित्र संत हैं, उर्दपुंडधारी, त्रिपुंडधारी। कहिए किससे मिलना है। बेटी भगत अजामिल कहाँ है। गुरुजी आए हैं, आज यहीं विश्राम होगा, आज यहीं संत भगवान विराजेंगे, यहीं भंडारा होगा, जल्दी बुलाओ भगत अजामिल को जिनके गृह। बेटी भगत अजामिल कहाँ है। गुरुजी आए हैं, आज यहीं अजामिल कहाँ है। गुरुजी आए हैं, आज यहीं विश्राम होगा, आज यहीं संत भगवान विराजेंगे, यहीं भंडारा होगा, जल्दी बुलाओ भगत अजामिल को जिनके गृह पावन भये, संत पधारे आए। उस वेश्या की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बाबा आप गलत जगह पे आ गए। मेरी मां कहती थी, बेटी जीवन में कुछ भी करना पर संतों से झूठ मत बोलना, मेरे घर में इतनी पवित्रता कहां जो मैं आपको पानी भी पिला सकूं, मेरा पति तो यहां का नामचीन डाकू है महाराज, बहुत नामी गिरामी है। और संतों को देखते ही तो बस वो क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं, और मैं तो मेरे घर में इतनी कहां पवित्रता कि मैं आपको जल पान करने के लिए भी कहूं, मेरे रसोई घर में तो इतनी अशुद्धि है कि मैं आपको जल भी नहीं दे सकती। कोई बात नहीं बच्ची, वो हमने भगत से पूछा, उसने इधर का ही पता बता दिया, तो अपन लोग आ गए, अभी जाते हैं आगे वाले गांव में रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। संत जब चलने लगे तो उस वेश्या के नेत्रों में धार बह चली आंसुओं की, और मन में सोचने लगी, इस जन्म में मैंने कुछ अच्छा किया मुझे स्मरण नहीं है, जरूर मेरे पूर्व जन्म का सुकृत आज उदय हुआ है, जो मेरे घर बिना बुलाए संत आ गए।

देखो मेरा दुर्भाग्य, मैं संतों को जल भी नहीं पिला सकती। महात्मा लोग जा रहे थे, पीछे दौड़ी दौड़ी आई, महाराज जी रुकिए, और चरणों में गिर के बोली, बाबा एक बात बताओ, मैंने सुना है कि रसोई में अपवित्रता हो तो स्वयं उसमें भोजन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सूखा सामान दे दें तो उसमें तो कोई अपवित्रता नहीं है।